0: 是可以。阿嬷，谢谢。
1: 嘿，乌莎，啊，乌莎，她哪里？
2: 阿嬷，
1: ये ने तेरे लिया, ना विची।
2: 嘿，ये पढ़े रखा
1: है? नल्ला रखा
2: है। He is my husband, Kumaran.
0: Hello.
2: ये नोड़े यूज़े फ्रेंड, विजय लक्ष्मी।
0: Hi.
1: Hello.
3: Hello.
1: इवर दा ये हस्बैंड मूर्ति।
0: Hello.
1: ये क्लासमेट उषा। Hello. हस्बैंड। इदा ये पया सुरेश।
2: Oh. Hi.
1: आमा, वने कितने पसंग है? इनक।
4: अम्मा, सीकर वांगा, आया कोपर रंगा।
1: Hey, इदा उम पुन्ना? தேவதை மாதிரி இருக்கா